सुरैया की आवाज से सजी ये रचना दिल लगी फिल्म से अभी आपने सुनी। 1949 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। नौशाद का संगीत था, शकील बदायूनी की लिखी रचना।

किशोर कुमार की आवाज से सजाई ये गीत मशाल फिल्म से अभी आपने सुना। 1984 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हृदयनाथ मंगेशकर का संगीत था, जावेद अख्तर की लिखी रचना। आज के भोर सुहानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सज रहा है ये गीत।

0: സമയം 7 മണി കഴിഞ്ഞ് 59 മിനിറ്റും 54 സെക്കൻഡും. ഇനി 8 മണിക്ക് സമാചാർ പ്രഭാത്, തുടർന്ന് മോർണിംഗ് ന്യൂസ് ഡൽഹി റിലേ.
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। और भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की शॉटपुट स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस के पवन चंदना और नागा भरत डाका से बातचीत की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी चर्चा हुई। विक्रम 1 भारत का पहला निजी क्षेत्र द्वारा विकसित ऑर्बिटल रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष तंत्र की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एरोस्पेस की पूरी टीम को शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में भी विक्रम 1 की सफलता की सराहना की थी।
5: विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है।
4: बिहार और असम की राज्य सरकारों ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन करने वाले लोगों के खिलाफ दर्ज मामले और अन्य कानूनी कार्रवाई वापस लेने का फैसला किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
6: गृह विभाग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार 26 जुलाई की शाम 6 बजे तक राज्य के किसी भी हिस्से में विरोध प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक, प्रतिशोधात्मक या प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस अवधि तक दर्ज सभी प्राथमिकी, परिवाद और कारण बताओ नोटिस वापस लेने की विधिक प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ ही इन मामलों में गिरफ्तार या निरोधित सभी व्यक्तियों को जल्द रिहा किया जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इन मामलों में नामित व्यक्तियों के खिलाफ भविष्य में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
4: उधर असम के गृह विभाग ने बताया है कि विरोध प्रदर्शनों के संबंध में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ राज्य के किसी भी पुलिस प्राधिकरण द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार का विरोध प्रदर्शनों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कोई और प्रतिकूल कार्रवाई करने का प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक आज सुबह संसद भवन में आयोजित की जाएगी। मंगल मिलन के नाम से प्रचलित ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित होती हैं। इन बैठकों का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक इसी महीने की 21 तारीख को हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक को रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया था। तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया के सांसदों को भी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाएं भारत की लोकतांत्रिक और विकास यात्रा की आधारशिला हैं। श्री सिंह ने नई दिल्ली में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये पहल विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप आर्थिक रूप से सशक्त, तकनीकी रूप से सक्षम और आत्मनिर्भर पंचायतों के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पर्यटन मंत्रालय ने एयर इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य प्रतिष्ठित अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
2: ये समझौता कल नई दिल्ली में पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में हुआ। इस सहयोग का लक्ष्य एयर इंडिया के व्यापक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ साथ मंत्रालय की पर्यटन स्थल प्रचार पहलों का लाभ उठाकर भारत की वैश्विक पर्यटन क्षमता को बढ़ाना है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये साझेदारी एयर इंडिया के व्यापक वैश्विक नेटवर्क और भारत के विविध पर्यटन विकल्पों का लाभ उठाकर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देश की उपस्थिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि इस सहयोग के अंतर्गत संयुक्त गंतव्य अभियान और स्टॉप ओवर पर्यटन को बढ़ावा देने सहित विजिट इंडिया पास जैसी पहलों पर विचार किया जाएगा। समझौते के अंतर्गत मंत्रालय और एयर इंडिया डिजिटल और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर संयुक्त प्रचार अभियान सह ब्रांडेड डेस्टिनेशन मार्केटिंग और पर्यटन संबंधी कहानियों का संचालन करेंगे। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने खिलौना क्षेत्र को समर्थन देने और वर्ष 2032 तक वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी 5% तक करने के लिए कार्यबल के गठन की घोषणा की है। वे नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा आयोजित खिलौना क्षेत्र से संबंधित हितधारकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री गोयल ने विनिर्माण, नवाचार और निर्यात को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार खिलौना क्षेत्र प्ले बुक का भी शुभारंभ किया। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि केंद्र सरकार अगले महीने की 25 तारीख की रात से भारत में इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाएगी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को निराधार बताते हुए कहा है कि सरकार द्वारा ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने चीन यात्रा के दौरान पेचिंग में चीन की उप विदेश मंत्री हुआ चुनयिंग से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। विदेश सचिव ने भारत और चीन के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने और व्यापार तथा आर्थिक संबंधों में पारस्परिक रूप से लाभकारी विकास के अवसरों पर भी चर्चा की। चीन में भारतीय दूतावास के अनुसार दोनों अधिकारियों ने भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को भी स्वीकार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थानीय चुनावों के दौरान मतदान के दिन हुई हिंसक झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान ने बताया है कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। ये चुनाव जो मूल रूप से एक दिन के लिए निर्धारित थे अब 8 से 10 अगस्त तक 3 चरणों में आयोजित किए जा रहे हैं। पीपीपी और पीएमएलएन ने कई निर्वाचन क्षेत्रों में एक दूसरे पर चुनावी धांधली का आरोप लगाया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने चुनावों का बहिष्कार किया है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दक्षिण आंतरिक तथा तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरलम, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज दिन में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने आज राज्य के अलग अलग हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अनेक हिस्सों में कल रात से बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, देहरादून, टेहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उधमसिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल जिलों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश और गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना जताई है। विभाग की चेतावनी के मद्देनजर राजधानी देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली और बागेश्वर में आज सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली लगभग 50 सड़कें बंद हैं जिन्हें खोलने का कार्य जारी है। हालांकि चारधाम यात्रा मार्ग फिलहाल खुले हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में मानसून सक्रिय रहेगा। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: भारत की पैरा खिलाड़ी शर्मिला धनखड़ ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं के शॉटपुट F57 स्पर्धा में 9.81 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीता है। शर्मिला राष्ट्रमंडल खेलों के पैरा एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस अवसर पर शर्मिला ने कहा कि वे देश के लिए पदक लाकर बहुत प्रसन्न हैं।
4: हम बहुत खुश है, हमारे देश के लिए मेडल लाके हम आगे भी ऐसे ही मेडल लाते रहेंगे और नेक्स्ट कॉमनवेल्थ की अच्छी तैयारी करेंगे। इस मेडल से मेरे आगे का रास्ता और आसान हो गया और अच्छी मेहनत करके और अच्छा रिकॉर्ड बनाएंगे।
1: सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीता है। भारत के पदकों की संख्या अब 10 हो गई है। राष्ट्रपति और खेल मंत्री ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद प्रियंका। पेपर लीक पर सख्ती से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पेश होने की खबर आज नवभारत टाइम्स और जनसत्ता सहित सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, पार्टियां राजनीतिक नफा नुकसान के गणित में जुटी, हंगामे के बाद विपक्ष चर्चा को राजी। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, 10 साल जेल 10 करोड़ जुर्माने का प्रस्ताव, आज बहस संभव। दैनिक जागरण की खबर है, जंतर मंतर पर प्रदर्शन को हिंसक बना रहे अपराधी, 989 की हुई पहचान। पत्र ने प्रदर्शन का प्रोटोकॉल शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जहां पुलिस की सख्ती पर सवाल उठाए हैं, वहीं पुलिस कर्मियों पर हमले का संज्ञान भी लिया है। पत्र ने कहा है कि उचित ये होगा कि न्यायालय ये सुनिश्चित करे कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के नाम पर अराजक तत्व बचने न पाए। अमर उजाला ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का बयान प्रकाशित किया है, देश में जल्द ही 10 और 20 रुपए के पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोटों का परीक्षण शुरू हो सकता है, आरबीआई के प्रस्ताव को सरकार ने दी मंजूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, 100 करोड़ से अधिक आय वाले करदाताओं की संख्या 5 वर्ष में 4 गुना बढ़ी। सरकार ने कहा, समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने से आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आए हैं। सूर्यास्त के बाद कल दिखेगा बकमून का आकर्षण, शबाब पर होगा चांद। हिंदुस्तान ने बताया है, दूधिया रोशनी बिखेरता हुआ पूर्ण चंद्र बकमून की शक्ल में नजर आएगा, प्रत्यक्ष चंद्र घटनाओं में से एक, नग्न आंखों से भी देख सकेंगे।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते निजी अंतरिक्ष तंत्र की सराहना की। विक्रम 1 की सफलता के बाद स्काई रूट के संस्थापकों से की मुलाकात। बिहार और असम सरकारें नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले वापस लेंगी। विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार प्रदर्शनकारी भी रिहा किए जाएंगे। एनडीए संसदीय दल आज नई दिल्ली में अपनी साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक करेगा। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत ब्रांड के अंतर्गत भारत को पसंदीदा वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए एयर इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और भारत और चीन ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व को दोहराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi hails India's growing private space ecosystem, meets Skyroot Aerospace founders after Vikram 1 success. Bihar and Assam governments to withdraw cases against NEET protesters and release those arrested under various charges. NDA parliamentary party to hold its weekly Mangal Milan meeting in New Delhi today. Tourism Ministry signs MOU with Air India to promote India as preferred global tourism destination under Incredible India brand. India and China reaffirm importance of maintaining peace and tranquility along border. And India's para-athlete Sharmila Dhankar wins gold medal in women's shot put event at the Commonwealth Games. Prime Minister Narendra Modi interacted with Pavan Chandna and Naga Bharat Dhaka of Skyroot Aerospace. In a social media post, Mr. Modi highlighted that the success of Vikram 1 featured prominent

0: बदंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत हमेशा की तरह एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी ने। लिखते हैं,
2: ऊंची उड़ान भरने के लिए हिम्मत के साथ साथ दृढ़ इच्छा शक्ति और विश्वास का होना जरूरी है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार को भेजने के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी का।
2: रोहांसी छत्तीसगढ़ से मुकेश साहू और नंदिनी साहू।
3: और राजाजी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद ने लिखा है, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार। गुजरे सप्ताह हमने चींटियों पर गीत सुना, बहुत पसंद आया गीत। गांव की धरती में आपने प्रकृति, पर्यावरण, खेत खलिहानों, फसलों और गाय भैंस के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से बताया। आपने आगे लिखा है,
2: सुंदर प्यारा गीत टिम टिम तारा जादुई पिटारा हमारे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद आता है। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस गीत को बार बार बजाया करें।
3: इस सप्ताह हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुछ लघु कथाएं, जिनसे निश्चित रूप से हमें प्रेरणा मिलेगी
2: जी।
3: इस क्रम में श्रोताओं, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रेरक प्रसंग, जो उनकी मित व्ययिता और संसाधनों के सदुपयोग और अपव्यय न करने के स्वभाव को दर्शाता है।
2: ये उन दिनों की बात है जब गांधी जी के नेतृत्व में भारत का स्वतंत्रता संग्राम जोरों पर था। गांधी जी के बहुत सारे प्रशंसक थे तो आलोचक भी बहुत थे
3: जी। उन्हें पसंद करने वाले थे तो नापसंद करने वाले भी थे।
2: बिल्कुल।
3: एक बार की बात है, किसी ने उन्हें कई पन्नों का एक लंबा पत्र लिखा जिसमें उनकी जमकर निंदा की गई।
2: गांधी जी ने उसे पढ़ने के बाद कागज में लगी धातु की पिन सावधानी से निकालकर अलग रख ली ताकि उसे दोबारा उपयोग किया जा सके और पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया।
3: जब उनके निजी सचिव महादेव देसाई जी ने पूछा कि इतनी छोटी सी पिन को संभाल कर रखने की क्या आवश्यकता है, तो गांधी जी ने समझाया कि देश के संसाधन अमूल्य हैं
2: जी।
3: यदि हर व्यक्ति छोटी छोटी वस्तुओं का भी सोच समझकर उपयोग करे और उन्हें व्यर्थ न गवाए तो बहुत बड़ी बचत हो सकती है।
2: श्रोताओं, इस प्रसंग से यही प्रेरणा मिलती है कि छोटी छोटी चीजों का भी हमें सम्मान करना चाहिए और अपव्यय या फिजूल खर्ची से हमें बचना चाहिए।
3: एक और बात समझ में आती है श्रोताओं, कि संसाधनों का पुनः उपयोग या रीयूज करना चाहिए। सादगी और मितव्ययिता जीवन का महत्वपूर्ण गुण है
2: जी। श्रोताओं, एक और बात, गांधी जी दिखावे और भोजन की बर्बादी के भी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया कि भोजन भी उतना ही लें जितना खाया जा सके।
3: आज के युग में श्रोताओं, सभी साधनों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन हो रहा है
2: जी।
3: गांधी जी का ये प्रेरक प्रसंग सचमुच एक उत्तम उदाहरण है।
2: श्रोताओं, आज आपने इस प्रसंग में हिंदी का एक शब्द सुना, शब्द था मितव्ययिता। अब इसका अर्थ जान लेते हैं
3: जी। श्रोताओं, मितव्ययिता इस शब्द का अर्थ है जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना, और अनावश्यक खर्च से बचना ही मितव्ययिता कहलाती है।
2: जैसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे बिजली और पानी का अनावश्यक उपयोग न करना, केवल जरूरत की वस्तुएं ही खरीदना, भोजन की बर्बादी न करना और समय का सदुपयोग करना
3: जी। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना गांधी जी के जीवन का ये प्रेरक प्रसंग। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, गांधी जी के निजी सचिव का नाम क्या था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था?
3: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और आप हमें संदेश व प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।

0: और आपको बता दें कि यदि आप एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें सुनना चाहते हैं तो एनसीईआरटी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल पर जाएं, वहां हमारी पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण आप सुन सकते हैं।
1: और यदि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों का पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाइए, टाइप कीजिए एनसीईआरटी बुक्स पीडीएफ। निर्देशों का पालन करें और पुस्तक को डाउनलोड करें।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो करना न भूलें।
1: और अब बारी है श्रोताओं हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम जलाते चलो।
0: एनसीईआरटी की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत इस कार्यक्रम को गीत संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों को प्रेरित करती है कि वे प्रेम और स्नेह का दीप जलाते रहें और निराशा के अंधकार में आशा की ज्योति जलाते हुए समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहें।

0: और श्रोताओं अब सुनते हैं कार्यक्रम लता क्यों नहीं बोलती।
1: शिक्षकों के लिए विशेष रूप से निर्मित इस कार्यक्रम में बच्चों के मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया गया है और ये बताने की कोशिश की गई है कि वे संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं जिनके कारण बच्चों की सीखने की प्रक्रिया बाधित होती है।

0: हाँ तो बच्चों बताओ, सूर्य किस दिशा से उगता है?
1: पूरब से।
0: शाबाश। और किस दिशा में डूबता है?
1: पश्चिम में।
0: अरे लता, तुम क्यों नहीं बोल रही?
2: दीदी दीदी, ये तो कुछ बोलते ही नहीं है।
0: क्यों लता, तुम्हारी क्या समझ में नहीं आ रहा मैं जो पढ़ा रही हूँ?

0: का जवाब नहीं देती। कक्षा के बच्चे कहते थे कि लता बुद्धू है, पर अगर वो इतनी बुद्धू होती तो तीसरी कक्षा में कैसे आ पाती। उन्होंने लता के व्यवहार की पहेली हल करने के लिए कमर कस ही ली। उन्होंने गौर किया कि लता आधी छुट्टी में भी अकेली ही रहती है, बाकी बच्चों से घुलती मिलती नहीं है, बच्चे भी उसे अपने साथ खिलाते नहीं हैं, बल्कि कई चंचल बच्चे उसे काफी तंग भी करते हैं। दो ही हफ्तों में उमा देवी की समझ में अच्छी तरह आ गया कि लता कक्षा की सबसे अच्छी छात्रा है। वो बोलती भले ही ना हो, पर लिखित परीक्षाओं में उसके अंक बाकी छात्रों से काफी अच्छे होते हैं। तो क्या ये प्रतिभाशालिनी छात्रा सिर्फ बहुत कम बोलने के कारण हमेशा के लिए सबकी उपेक्षा का शिकार बन जाएगी? उमा जी के गले से ये बात उतर नहीं पा रही थी। उन्होंने लता के माता पिता से मिलने का निश्चय किया।
1: नमस्ते बहन जी।
2: नमस्ते दीदी।
3: नमस्ते बहन जी।
4: नमस्ते दीदी।
5: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते बहन जी।
6: नमस्ते शिखा।
7: अरे दीदी जी, आप
8: आइए आइए।
7: नमस्ते बहन जी।
8: नमस्ते, यहाँ बैठिए
7: जी,
8: यहाँ।
7: आज कैसे गरीबों के घर आपने।
8: अरे बहन जी, कैसी बात कहती हैं आप,
7: मैं तो कई दिन से सोच रही थी, आज निकाल पाई समय।
8: ठीक कहती हैं आप, काम में से समय निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और आपको तो पढ़ाना भी होता है, दोहरी जिम्मेदारी।
7: हाँ ये तो है।
8: अरे लो, लता के बापू भी आ गए।
7: राम राम दादा।
9: हाँ,
7: कैसे हैं आप?
9: राम राम। अरे आप यहाँ? लता, ओ लता, बहन जी के लिए शरबत ला। इतनी बड़ी ढींगड़ी हो गई पर अकल रहती भर नहीं। और तुम लता की माँ, तुम्हें भी बातें बनाने से फुर्सत नहीं मिलती।
7: नहीं नहीं दादा, अभी तो आकर बैठी हूँ मैं।
9: अरे बहन जी, ये माँ बेटी है ही ऐसी, कतई पागल।
7: ऐसा मत कहिए दादा, लता तो बहुत अच्छी बच्ची है।
9: अच्छी? और ये छोरी, मुंह से तो बोल नहीं फूटता इसके।
7: अरे लता, आओ बेटा, आओ आओ, आओ बैठो, यहाँ यहाँ बैठो मेरे पास।
1: जी दी दी।
9: लता जाओ यहाँ से, बड़े लोगों में बैठने का तेरा कोई काम नहीं। बहन जी, आप इसकी माँ से बतियाओ, मैं जरा बाहर का काम देखूं। हा?
7: जी।
0: लता के घर जाकर उमा देवी की समझ में आया कि लता इतनी चुप चुप क्यों रहती है। उसके पिता का अपमानजनक व्यवहार किसी को भी गुमसुम बनाने के लिए काफी है। लता की दबी सहमी माँ भी उसे किसी किस्म का आत्मविश्वास नहीं दे पा रही। फिर भी लता को रहना तो इन्हीं माता पिता के साथ है। उमा जी ने तय किया कि इन्हीं माता पिता की मदद से वो लता की समस्या सुलझाएंगी। शुरुआत उन्होंने खुद की।
7: अच्छा बच्चों, ये बताओ कि पूरी कक्षा में सबसे ज्यादा तेज और दूर तक कौन दौड़ता है?
2: दीदी लता। दीदी लता।
7: लता?
10: जी दीदी।
7: क्या ये लता?
10: जी दीदी।
7: अरे नहीं।
10: हाँ दीदी, लता को कोई नहीं पकड़ पाता।
7: अच्छा,
10: एक बार इसका बछड़ा खेतों में भाग गया था। हम सब उसे पकड़ने दौड़े, पर बछड़ा दौड़ता गया दौड़ता गया, सारे थक गए, पर लता बछड़े को पकड़ कर ही लाई।
7: अच्छा
10: जी दीदी।
7: लता, ये सच है क्या? अरे वाह लता, तुम तो बड़ी होशियार हो।

0: महीने भर बाद स्कूल की खेल प्रतियोगिताओं में दौड़ के 4 इनाम लता को मिले। उमा जी ने स्कूल के सभी बच्चों के माता पिता को व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया था। भरी सभा में अपनी बेटी को 4-4 इनाम मिलने पर लता के पिता ने अपने को गौरवशाली महसूस किया।
1: अरे वाह।

0: पगली छोरी, दौड़ में तो खूब नंबर मारा तूने।
1: बापू मुझे पगली छोरी क्यों कहते हो, मैं पगली नहीं हूँ।
0: देखा इनाम पाकर कैसी जबान लड़ा रही है। अच्छा चल, तू पगली छोरी नहीं है, ठीक।
2: नमस्ते दादा।
0: नमस्ते नमस्ते।
2: क्या बातें हो रही है बेटी से।
0: अरे आपने तो बहन जी कमाल कर दिया। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था कि जरा जरा से बच्चे ऐसे बढ़िया खेल कूद दिखाए।
2: हाँ दादा, और खासकर लता।
0: लता ने तो बहन जी बहुत ही कमाल किया।
2: और दादा आप इसकी तरफ जरा सा ध्यान देना तो ये और भी कमाल कर सकती है।
0: वाह बहन जी, आप ही क्या कहती हैं, इसमें हमने क्या ध्यान देना है, आपने ध्यान देना है वो आप दे ही रही हैं।
2: देखिए दादा, मेरे पास लड़की रहती है करीब 4 घंटे और आपके पास रहती है 20 घंटे, है कि नहीं।
0: हाँ बिल्कुल।
2: और फिर आप उसे जितना प्यार करते हैं उतना कोई और, चाहे मैं ही क्यों ना हो, कर सकता है भला।
0: नहीं जी नहीं।
2: तो दादा अगर मेरी जरा सी मेहनत से लड़की इतना अच्छा नतीजा दिखा सकती है तो आपके सहारा देने से कितना कमाल हो जाएगा, सोचिए जरा।
0: पर बहन जी मैं क्या करूं, देखो इसकी किताबें वर्दी।
2: वो सब तो ठीक है दादा, उसमें आप कोई कमी नहीं करते, पर आप इसे हर वक्त डांटना बंद कर दें।
0: वो तो बहन जी।
2: देखिए दादा, आप हैं एक माली के समान और ये है एक फूल के समान। आप ही उसे कोंचते रहेंगे तो क्या नतीजा होगा।
0: वो
2: अब देखिए ना, इतनी होशियार लड़की और मामूली बात करने में भी कितना घबराती है।
0: पर उसका इसकी पढ़ाई से क्या लेना देना है
2: दादा। कम बोलने की वजह से काफी लोग इसे बुद्धू समझते हैं।
0: है?
2: लता रहती भी काफी सहमी सी है, बच्चों के साथ घुलमिल भी नहीं पाती।
0: हो
2: धीरे धीरे उसका मन पढ़ाई से भी उचटने लगेगा और हो सकता है कल को घर गृहस्थी में भी।
0: बहन जी मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं था।
2: पर अब तो आपको मालूम हो गया ना दादा।
0: जी
2: बस आप इसे बात बात पर डांटना बंद कर दें।
0: हाँ हाँ बहन जी, मैं कोई इसका दुश्मन थोड़े ही हूँ, बाप हूँ बाप।
2: वाह दादा, लाख टके की बात कही आपने।

0: उमा देवी ने लता के आत्मविश्वास को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू तो खुद ही की, पर उसे बनाए रखने के लिए उन्होंने लता के पिता का सक्रिय सहयोग मांगा। उमा जी की लगन भरी पहल ने ही लता के पिता को प्रेरित किया। आप भी माता पिता का सक्रिय सहयोग मांगिए। माता पिताओं से मिलने के बहुत से अवसर आपको मिलते हैं, स्कूल के उत्सव, सामाजिक कार्यक्रम या फिर घर पर मुलाकात। माता पिता का पूरा और सक्रिय सहयोग आपका और आपके विद्यार्थी का अधिकार है। इसे पाने के लिए कोई प्रयास बाकी न रखें।
1: भाई ये क्या मतलब है लता, तुम तो हर बार मुझे ही सबसे पहले चोर बना देती हो।
2: मैं क्या करूं, तू डरते इतना धीरे है। अच्छा सुन लता, शाम को मेरे घर आएगी?
3: हाँ हाँ,
2: पता है मेरे मामा ने मेरे लिए छोटी सी गुड़िया भेजी है।
3: अच्छा,
2: उसके सचमुच के बाल है।
3: ओहो,
2: और एक कंघी भी है।
3: अरे सच, फिर तो मैं स्कूल का काम खत्म करके आऊंगी।
2: ठीक है।
1: अच्छा लता, वो मैं भी आ जाऊंगा स्कूल का काम लेकर तेरे घर। वो मुझसे ना भाई गणित के सवाल ही नहीं होते, मैं क्या करूँ।
3: ठीक है आ जाना।
1: अच्छा,
2: मैं भी आ जाऊँ लता।
3: हाँ हाँ,
1: मैं भी आ जाऊँ लता।
2: हाँ हाँ, तुम भी आ जाना।
0: आखिर उमा जी की मेहनत और लता के माता पिता का सहयोग रंग लाया। लता अब बदल चुकी है, आत्मविश्वास से भरपूर, सहज, साथियों की संगत और अपने बचपन का आनंद लेती है। ये चमत्कार आपके यहां भी संभव है।

0: खुशियाँ अपनाएं खुशियाँ, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी
2: जगबंधु,
1: कुसुमलता
2: और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग।

0: ആകാശവാണി സമയം 5 മണി.
1: ഈ ആകാശവാണി കാ തിരുവനന്തപുരം കേന്ദ്ര ഹേ ആജ് കേ ഹിന്ദി പ്രസാരണ മേ ആയേ സുൻതേ ഹേ ഡോക്ടർ അശോക് ബി കി വാർത്ത ഹിന്ദി കെ മഹാൻ കഥാകാർ മുൻഷി പ്രേംചന്ദ്.
2: दिन मैं एक मजदूर हूँ जिस दिन कुछ न लिखूं मुझे रोटी खाने का कोई हक नहीं. ये साहित्य के एक मशहूर लेखक का वक्तव्य है जिनका जन्म 145 साल पहले 31 जुलाई 1880 को बनारस शहर के पास लम्ही नामक गांव में एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था. लम्ही बनारस से 4 मील दूर स्थित गांव है. उनका नाम धनपत राय था. घर में चाचा प्यार से नवाब राय कहकर पुकारते थे. हिंदी साहित्य का इतिहास उस महान लेखक को प्रेमचंद की संज्ञा से पुकारने लगा. प्रेमचंद का बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता था. प्रेमचंद के 8 वर्ष की अवस्था में माता आनंदी देवी चल बसी. 11 वर्ष होते होते दादी भी चल बसी. 16 वर्ष की अवस्था में उनके पिता अजायब रॉय की भी मृत्यु हो गई. उस जमाने में भारत की ग्रामीण व्यवस्था हिल रही थी. उसका आर्थिक और सामाजिक ढांचा बदल रहा था. 20वीं शताब्दी के आरंभ

0: कुमारी सूरदास को अपने उपन्यास का प्रधान पात्र मानकर लिखी गई है। प्रेमचंद हिंदी साहित्य में ही नहीं परंतु भारतीय साहित्य एवं विश्व साहित्य के प्रांगण में इस उपन्यास से अमर स्थान प्राप्त कर चुके हैं। प्रेमचंद एक महान मानवतावादी कथाकार हैं। रंगभूमि का प्रधान पात्र सूरदास सहनशीलता, आत्मनिर्भरता, त्याग एवं क्षमाशीलता से ओतप्रोत पात्र है। प्रेमचंद का उपन्यास कायाकल्प दो वर्गों की कहानी है, एक तरफ जागीरदार और रानियां तो दूसरी तरफ कृषक जनता है। कायाकल्प किसानों का नहीं होता बल्कि जगदीशपुर की रानी देवप्रिया का होता है। इस उपन्यास के द्वारा मुंशी प्रेमचंद रियासतों के राजाओं की विलासिता, कामुकता, बहुपत्नी प्रथा तथा मानवीय गुणों के अभाव से जनता पर किए जाने वाले अत्याचारों का सजीव चित्र प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। निर्मला प्रेमचंद का अनमोल उपन्यास है। इसका कथ्य अनमेल विवाह और दहेज समस्या पर आधारित है। अपने कतिपय बृहत उपन्यासों में देश की कई महत्वपूर्ण समस्याओं का विश्लेषण करने के पश्चात प्रेमचंद ने इस छोटे से उपन्यास में भारतीय नारी की समस्या की ओर संकेत किया है। निर्मला को दहेज और अनमेल विवाह की बलिवेदी पर चढ़ाई जाने वाली एक युवती की करुण कहानी बताया गया है। प्रतिज्ञा उपन्यास विधवा समस्या के समाधान के रूप में लिखित एक सामाजिक रचना के रूप में प्रतिबिंबित करता है। भारतीय समाज की सबसे पीड़ित विधवा नारी के उद्धार की दृष्टि से यह उपन्यास लिखा गया। इस उपन्यास में विधवा समस्या को रूढ़िगत एवं आध्यात्मिक दृष्टि से न देखकर जीवन और रोटी दाल की समस्या को हल करने के प्रयास के रूप में देखा गया है। गबन उपन्यास एक मध्यवर्गीय समाज के आर्थिक वैषम्य की समस्या तथा नारी की आभूषण प्रियता की लालसा को दिखाता है। कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने तत्कालीन सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर सम्यक प्रकाश डाला है। सन 1930 में नमक सत्याग्रह तथा किसान आंदोलन, अछूतोद्धार, मंदिरों में हरिजन का प्रवेश, अस्पृश्यों में शिक्षा का प्रचार आदि विभिन्न समस्याओं पर इस उपन्यास के माध्यम से प्रेमचंद ने प्रकाश डाला है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है और यह उपन्यास आदर्शोन्मुख यथार्थवादी है। गोदान को एक महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है। साथ साथ राष्ट्रीय उत्कर्ष का संस्कार गोदान से जोड़ा गया है। इसे भारतीय जीवन के कृषक जीवन का महाकाव्य घोषित किया है। मंगलसूत्र प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास है। उन्होंने ये उपन्यास बीमारी की हालत में लिखना शुरू किया था। इस उपन्यास के सिर्फ 4 परिच्छेद ही वे लिख पाए कि मृत्यु ने उनकी जीवन लीला समाप्त कर दी। प्रेमचंद के साहित्य में गांधीवादी विचारधारा की झलक दिखाई देती है। हरिजन जीवन, अनाथालयों की स्थापना, कृषि संस्कृति, श्रम की प्रतिष्ठा, नारी सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता, मूल्यों का संघर्ष सब इसके प्रमाण है। अभाव, उत्पीड़न, शोषण, अन्याय, अत्याचार और गरीबी के खिलाफ प्रेमचंद की रचनाएं सशक्त हथियार हैं। प्रेमचंद विश्व साहित्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। जिस रचनाकार पर काल की सीमाओं को लांघकर लिखा पढ़ा जाएगा, प्रेमचंद हिंदी के कालजयी रचनाकार हैं। 31 जुलाई प्रेमचंद का जन्म दिवस है। हर साल ये दिन भारतीय साहित्य के इतिहास में एक अनमोल दिन है। इसी दिन प्रेमचंद की जयंती मनाई जाती है।
1: अभी आप डॉक्टर अशोक बी की वार्ता सुन रहे थे। हिंदी के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद। इसी के साथ

0: നുള്ളി നോവിക്കാതെ എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി പൂവച്ചൽ ഖാദർ വരികളെഴുതി രാജാമണിയുടെ സംഗീതത്തിൽ യേശുദാസ് പാടിയ ഗാനമാണ് ഇപ്പോൾ കേട്ടത്. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ സമാചാർ സന്ധ്യ, തുടർന്ന് ന്യൂസ് അറ്റ് 9 ഡൽഹി റിലേ.
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा. मुख्य समाचार. लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी. विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान. सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया. महाराष्ट्र, बिहार और असम में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया. पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए. भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों को अवैध कब्जे को छिपाने की कवायद बताया. जून में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीने के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंचा. ओडिशा में मूसलाधार बारिश के कारण प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का कहर. छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट. और खेलों में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीता. अब समाचार विस्तार से. लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा हो रही है. ये विधेयक लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया गया है. विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी पाए गए अपराधियों की संपत्ति की जब्ती के कठोर दंड शामिल हैं. मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश में दैनिक सुनवाई के लिए विशेष त्वरित न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान है. अपराधों की जांच पुलिस स्टेशन में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर पूरी करनी होगी. अभियोग पत्र दाखिल होने की तिथि से 3 महीने के भीतर मुकदमे समाप्त हो जाने चाहिए. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की गहरी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है. उन्होंने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के युवाओं के भविष्य से कोई समझौता नहीं होने के संकल्प की पुष्टि करता है. कांग्रेस और यूपीए शासनकाल में हुई कई परीक्षा लीक की घटनाओं का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि इन मामलों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून नहीं था.
3: यू मस्ट कॉम्प्लीमेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड दिस गवर्नमेंट.
4: कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देना चाहिए क्योंकि हमारी सरकार ने उस अधूरे कार्य को पूरा किया है जिसे पहले ही पूरा किया जाना चाहिए था. वर्ष 2024 में ये विधेयक विद्यार्थियों को ये विश्वास दिलाने के उद्देश्य से लाया गया था कि उनका भविष्य सुरक्षित है. 2024 के अधिनियम के क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अब ये संशोधन लाया जा रहा है ताकि कानून को और अधिक सख्त बनाया जा सके तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित किया जा सके.
3: टू एंश्योर स्पीडी जस्टिस.
2: कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर

0: पार्टी टीडीपी के लावू श्रीकृष्ण देवरायलू ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक मामले को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक बदलाव करने को तैयार है। शिवसेना के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने कहा कि ये ऐतिहासिक विधेयक देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य आकांक्षाओं और प्रयासों को सम्मान देगा।
1: मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूरी सरकार ताकत के साथ खड़ी है। पेपर लीक की घटनाओं के तुरंत बाद हमारी सरकार ने रिकॉर्ड समय में ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे आने वाले समय में पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है बल्कि बच्चों का कीमती साल बचाना भी है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण कई बार बाधित हुई।
2: पिछले 6 दिनों से बार बार सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद आज लोकसभा में भोजनावकाश के बाद कामकाज सुचारू रूप से चला। पहली बार कार्यवाही स्थगित होने के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की बैठक शुरू हुई तो सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले जब सुबह 11 बजे दोनों सदनों की बैठक शुरू हुई तो विपक्ष के सदस्यों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बाद दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। जब राज्यसभा की बैठक पुनः शुरू हुई तो एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। वहीं विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। एफआईआर वापस लेने की प्रक्रिया संबंधित अदालतों की अनुमति से शुरू की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का प्रयास बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
3: हमने पाक अधिकृत कश्मीर में सो कॉल्ड इलेक्शंस के बारे में खबरें देखी है। इस मसले पर भारत का पक्ष साफ और निरंतर रहा है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका पूरा भूभाग भारत का अभिन्न और अविच्छेद्य अंग है। वहां चल रहे लीपापोती वाले इलेक्शन पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का अपने अवैध कब्जा और वहां के लोगों का मानव अधिकार का हनन कुछ छिपाने का प्रयास है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि ओडिशा बंदरगाह पर MV AGN रागनार जहाज पर हुए हमले में लापता हुए भारतीयों की तलाश जारी है।
3: ओडिशा बंदरगाह के पास में जो हुई थी उसमें 4 भारतीय नागरिक उस पे सवार थे। 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और 2 अभी भी लापता हैं। छानबीन चल रही है उनके लिए और वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं उनसे हम लोग संपर्क में हैं। साथ ही साथ 2 भारतीय जो लापता हैं उनके परिवारजनों के साथ में भी हम लोग संपर्क साधा है।
0: इस वर्ष जून महीने में भारत में औद्योगिक उत्पादन बढ़कर 23 महीनों के उच्चतम स्तर 7.3% पर पहुंच गया। आज जारी आंकड़ों के अनुसार जून महीने में विनिर्माण क्षेत्र में 7.8 जबकि बिजली और गैस आपूर्ति क्षेत्र में 10.6% की वृद्धि हुई। जलापूर्ति, सीवरेज और अपशिष्ट प्रबंधन में 6.1 और खनन तथा उत्खनन क्षेत्र में अपेक्षाकृत धीमी गति से 1% की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार ने इस वर्ष 1 अगस्त से 30 नवंबर तक देश भर के चीनी व्यापारियों पर भंडारण सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकना तथा उचित मूल्य पर चीनी की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करना है। सभी व्यापारियों को अपने पास उपलब्ध चीनी के भंडार की घोषणा करनी होगी और खाद्य तथा

0: सार्वजनिक वितरण विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर प्रत्येक सप्ताह स्टॉक को अपडेट करना होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल के आज 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने 5 स्मृति पुस्तकों का विमोचन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस उच्च संवैधानिक पद को महज सम्मान नहीं बल्कि एक गहन जिम्मेदारी बताया।
1: राज्यों की यात्राओं के दौरान युवाओं से मिलती हूँ तो मैं उन्हें प्रेरित करती हूँ कि वे नैतिक मूल्यों से जुड़े रहें और देश एवं समाज की उन्नति के लिए कार्य करें। महिलाओं से मेरा आग्रह होता है कि वे स्वावलंबी बने और आत्मविश्वास के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। जनजातीय समुदाय के लोगों से संवाद करते समय अनुरोध करती हूँ कि वे अपनी सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करें।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: उड़ीसा में लगातार हो रही मानसून की बारिश की वजह से प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ का संकट और गहराता जा रहा है। मौसम विभाग ने पश्चिमी उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बरगढ़ और झारसुगुड़ा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट वाले जिलों में बचाव और आपातकालीन तैयारियां के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF की टीमें तैनात की गई है। राज्य सरकार ने भरोसा दिलाया है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रकाश दास, आकाश समाचार, भुवनेश्वर।
0: केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरल में भारी वर्षा की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने राज्य के 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इससे पहले केवल 6 जिलों में येलो अलर्ट लागू था, लेकिन शाम तक विभाग ने 4 और जिलों को अलर्ट की सूची में शामिल कर दिया है। विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में लोगों से सतर्क रहने तथा जारी परामर्श का पालन करने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए इस महीने की 31 तारीख तक मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सरकार ने आज महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपया प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का पोर्टल अगले महीने की 1 तारीख से पंजीकरण के लिए खोला जाएगा। भारत की पहली सीधी वाणिज्यिक कंटेनर मालवाहक रेलगाड़ी नेपाल पहुंच गई है। इससे रेल आधारित सीमा पार माल ढुलाई में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। कैनोला की खेप ले जा रही 40 वैगनों की इस रेलगाड़ी ने संशोधित भारत नेपाल रेल पारगमन प्रोटोकॉल के तहत अपनी यात्रा पूरी की। और अब खेल खबरें। निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में धावक विशाल टीके और तैराक श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्रीहरि नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक तैराकी में 13वें स्थान पर रहते हुए अगले दौर में प्रवेश किया। सेमीफाइनल देर रात खेला जाएगा। वहीं धावक विशाल टीके ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में पदक की उम्मीद बनाए रखी है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त जबकि दूसरा 23 से 27 अगस्त के बीच खेला जाएगा। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एम्स नई दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के सहयोग से स्ट्रोक के बाद होने वाले वाचाघात एफेसिया के लिए मेलोडिक इंटोनेशन थेरेपी का पहला हिंदी संस्करण विकसित किया है। ये एक संगीत आधारित उपचार है जो स्ट्रोक के बाद ठीक हुए लोगों को दोबारा बोलने की स्थिति में लाने में मदद करता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर लोकसभा में चर्चा जारी। विधेयक में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया। महाराष्ट्र, बिहार और

0: refer to the IT sector's performance. The IT sector's performance in today's stock market has done very well. They've almost gone up by 3% or so. Now, this is the reason, is because the India's IT sector is dependent on earnings through their services exports and not so much on the AI boom. I mean, what we are seeing globally right now is a kind of almost like a blood. There was a circuit breaker was triggered in the South Korean market.
1: There's a sell-off in those tech shares.
0: No, there was a circuit breaker, which means that if it is crosses 10%, that the trading comes to a halt. So this is what happened, and this was purely because the over exuberance or overconfidence in the chip industry's ability to come in with greater returns, that has been dashed, and the demand for chips, particularly of the Chinese companies' launch of the new product, has also taken a bit of a hit. Whereas in the Indian IT sector, has not been influenced by the chip and the AI thing. They are still the old play of services and IT services play, with the global capability center play, which is why the Indian IT sector is still maintaining growth, whereas the globally there is a bit of a mayhem there.
1: There's always a question of valuation. So now you have the IT index showing a high valuation. The RBI is saying that the rupee is currently undervalued, evidenced by the FCNR deposits as well. While at the same time, the Asian markets, the AI related boom is showing that those shares are actually overvalued. So clearly this is a valuation story going on right now with IT and how the dollar is performing.
0: To a great extent, yes. Don't underestimate also the role that the crude oil prices have played here. And the crude oil prices have also softened considerably in the last couple of days. So that has also contributed to India's external sector scenario or the outlook.
1: Was there a profit booking in the capital goods sector, which fell by 2.4%? Because there is a leading company in the capital goods sector which has given good numbers in terms of revenue, earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, margin, order book and net profitability.
0: Whenever a company, in this case the company that you are referring to, If they come up with decent results, profit booking is par for the course. So I won't be ruling that out.
2: AKB, अगर इस पूरे महीने हम जुलाई के महीने में नजर डालें तो एक सेक्टर रोटेशन हमें नजर आया है, चाहे FIIs के नजरिए देखें या DIIs के नजरिए देखें, एक बड़ा चेंज हमें देखने को मिल रहा है. और ऐसे समय जो मॉनसून हमारे यहाँ पर अभी मॉनसून का सीजन है और तमाम चीजें हो रही हैं, तो आपको लगता है कि ये जो चेंज आ रहा है ये निवेश की दृष्टि से सही है या इसका लोगों को फायदा होगा जो मुनाफा वसूली करना चाहते हैं?
0: देखिए, बहुत सारे IPOs आने वाले हैं, तो जो आप बिकवाली की बात कर रहे हैं IPOs के लिए भी हो सकता है, नंबर वन. नंबर टू, जो मॉनसून की जो बात आपने की, मॉनसून की जो हमारी जो डेफिसिट है वो, हालांकि वो 40% डेफिसिट अब नहीं रही है, अब घटकर 14% हो गई थी, फिर अब बढ़कर 18% हो गई है. तो मॉनसून में जो एग्रीकल्चरल की जो एक इम्पैक्ट होने वाली थी वो अभी भी जो लगता है कि थोड़ी बहुत सीमित है. और तीसरी बात ये है कि जो हमारी जो आईटी सेक्टर जो है उसमें जो एक जोश दिख रहा है वो FIIs को अच्छा लग रहा है. इसीलिए अगर आप जुलाई का पूरा अगर ट्रेंड देखेंगे, FIIs
2: वही बता रहा था,
0: उतनी तरह पुल आउट नहीं किया उन्होंने
2: जी.
0: उन्होंने इस मार्केट में वो रहने का तय किया. हालांकि उनको ये मालूम है कि फेड में इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं और शायद यही मौका है कुछ पैसे बनाने का, क्या करने का. तो ये जो मैं मतलब ये बोलने का मेरा तात्पर्य यही था कि ये एक टेम्पोररी चीज़ है, क्योंकि जो ही आप देखेंगे फेड अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो ये FIIs का रुख शायद बदल सकता है. तो कितने दिन तक ये टेंडेंसी, ये सेंटिमेंट बरकरार रहे, उसमें भी एक प्रश्न चिन्ह.
2: करंट सिनेरियो की अगर हम बात करते तो फेड का जो भी रिजल्ट होगा वो कितना इम्पैक्टफुल आपको लगता है?
0: इम्पैक्टफुल तो जरूर होगा हमारे स्टॉक मार्केट में. FIIs से पुल आउट जरूर होगा
2: जी.
0: और स्टॉक मार्केट को उसकी जो डेवलपमेंट जो है, इम्पैक्ट है, उसको संभालना पड़ेगा
2: जी. आगे बढ़ते हैं. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने आज चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए अपने वित्तीय नतीजे जारी किए हैं। कंपनी की कुल आय सालाना आधार पर 9.8% से ज्यादा बढ़कर 17,529 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं वार्षिक आधार पर कंपनी का सकल लाभ 3% घटकर 2,673 करोड़ रुपए रह गया है।
1: एकेबी, माय क्वेश्चन इज ऑन द एफएमसीजी सेक्टर। वी सीइंग दैट द रेन्स आर बैक इन द मंथ ऑफ जुलाई आफ्टर डेफिशिएंट रेन्स इन द मंथ ऑफ जून। वी आर सीइंग In agriculture, the sowing of kharif crops, paddy, pulses, oil seeds, cotton, and sugarcane. So when is the josh going to come back in the FMCG sector, sir?
0: It's too early, number one, because the demand outlook is still very muted. And if rains are so far have held up, but it remains to be seen that how long these rains outlook continues to give you confidence over agricultural output remaining what they were originally projected. So FMCG sector is very, very sensitive to how the rural economy fares. So the rural economy does not do well. But if the manner in which it is happening so far, I think rural economy will not be largely affected. So to that extent, FMCG sector's outlook is not that bad. Josh may not come back, but the outlook is not that bad.
1: In more news, Larsen & Toubro Limited today reported its financial results for the first quarter of the current fiscal year. The company's consolidated revenue from operations rose nearly 6.7% year-on-year to 67,942 crore rupees. The firm's net profit increased by around 14% to 4,123 crore rupees on an annual basis. AKB, we earlier discussed that, you know, capital goods sector actually fell by 2.4% in trading today, the Nifty index. Is it because engineering goods to some extent are being hit by all these protectionism by the US market in terms of its tariff policy? What is going to be the likely outlook for capital goods? Because as far as our net exports are concerned, one of the chief contributors is our exports of capital goods.
0: No, I am not at all that defensive on the capital goods sector, whatever may have happened in the stock market today. As long as the infrastructure sector is doing well, as long as the construction sector, and the sign of construction sector doing well is the Larsen & Toubro results today, is doing well, I don't see the capital goods sector faring poorly. So if you are betting on the capital goods sector, then I think you are betting the right sector.
2: आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के अनुसार इस वर्ष जून में भारत के औद्योगिक उत्पादन में सालाना आधार पर 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस संबंध में आंकड़े जारी किए हैं। इससे पहले मई में विकास दर को थोड़ा कम करके 5% बताया गया था। हालांकि मंत्रालय ने कहा है कि जून महीने में सभी चार बड़े क्षेत्रों में सकारात्मक वृद्धि देखी गई। बिजली और गैस आपूर्ति में 10.6% तथा विनिर्माण में 7.8% की बढ़त हुई है। जलापूर्ति, सीवरेज और कचरा प्रबंधन में 6.1% की तेजी आई। वहीं खनन और उत्खनन क्षेत्र में 1% की मामूली बढ़ोतरी हुई है। एकेबी, ये जो आंकड़े आए हैं IIP के हमारे सामने हैं, किस तरह से इन्हें आप देखते हैं, खासतौर पे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भारत की जो स्टैंडिंग पोजीशन है राइट नाउ, उसके आधार पर आपको क्या एक्सपेक्टेशन है इसमें?
0: देखिए, इसमें अगर आप सेक्टर को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हमारी इकोनॉमी की जो स्थिति है। जून का महीने का नंबर है ये
2: जी।
0: और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी और गैस सप्लाई देखेंगे, उसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुआ है 10%। और अगर आप हमारी ट्रांसमिशन सेक्टर की परफॉर्मेंस, पावर सेक्टर की परफॉर्मेंस जून के महीने में देखेंगे कि डिमांड ज़्यादा बढ़ने के बाद भी बावजूद जो जिस तरह से पावर सप्लाई, जनरेशन और सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन एकदम इंटैक्ट रही, उसी का प्रतिफलन आप देख रहे हैं कि 10.6% का ग्रोथ आपका इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो 7.8% ग्रोथ जो हुआ है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर IIP का जो शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा है
2: जी।
0: तो मुझे लग रहा है कि ये जून के महीने में जो बरसात के आने के पहले जो एक सर्ज देखते हैं, वही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देख रहे हैं। और बाकी जो माइनिंग एंड क्वेरिंग में है, वो उसमें जरा मेरे ख्याल से शायद जून के महीने में लास्ट ईयर बहुत हाई लेवल बेस था, उसी का बेस इफेक्ट दिख रहा है. पर ऑन द होल जो परफॉर्मेंस, आईआईपी का जो परफॉर्मेंस है वो मैं समझता हूँ.

0: की काफी आशाजनक
1: एकेबी
0: परफॉर्मेंस
1: इस पे पावर सेक्टर पे अगर हम नजर डालें तो शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा चढ़ते हुए ग्राफ में नहीं देखी गई है लास्ट कुछ मंथ की हम बात करें, कुछ दिन की बात करें, इसके पीछे क्या वजह हो
0: देखिए,
1: सकती है?
0: जो ये जो पावर की जो जो आईआईपी में जो आप देख रहे हैं वो पावर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में देख रहे हैं,
1: जी
0: पर मैं समझता हूँ कि जो पावर सेक्टर के स्टॉक मार्केट में जो है
1: जी
0: ज़्यादातर कंपनियाँ वो पावर इक्विपमेंट और पावर सप्लाई में ज़्यादा वो है, तो
1: जी
0: उनका जो नज़रिया या उनका जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी डिफरेंट है, और ये जो है सप्लाई और प्रोडक्शन के ऊपर वो है।
2: Just my question on manufacturing. We have the figures for the month of July PMI, which is at 53.9, and June was slightly higher, 54.2. But right now, the government of India is also giving a massive push to manufacturing. For instance, we have the news on the toy industry. The Commerce and Industry Ministry has said that we are pushing for a 5% share of the global market when it comes to toys. Now, it's one of many manufactured items. How do you see this push towards China Plus?
0: I think that the China Plus strategy has not really paid us off in a big way. Where it has paid off is only in one sector, which is in the mobile phone manufacturing sector, through the Apple's mobile phone manufacturing, through Tata Electronics, and even the Chinese, the Taiwanese companies perform factories here. So I think the manufacturing sector's performance is largely limited to a few sectors, and it is not widespread. And it is very necessary that the manufacturing sector growth not just shows up with a 7.8% growth; it should be in double digits. So this is that is only will give you a kind of employment growth that this country needs.
1: अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 10.8% नीचे आ गया क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच में निवेशकों ने काफी टेक शेयर बेचे। इससे पहले इस सूचकांक में 8% की अधिक गिरावट आई थी जिसके कारण कोरियाई एक्सचेंज को सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा और 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग रोकनी पड़ी। यह इस साल 7वीं बार था जब एक्सचेंज ने सर्किट ब्रेकर लगाया। ताइवान का ताइएक्स आज 4.6% से ज्यादा टूट गया। जापान का निक्केई 225 3.9% से अधिक नीचे आ गया। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक लगभग 1.2% लुढ़क गया। हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं दूसरी तरफ हांगकांग का हैंगसिंग इंडेक्स आज 0.4% के लाभ में रहा। एकेबी आज की बड़ी बात यह रही कि कोरियाई एक्सचेंज को सर्किट ब्रेकर लगाना पड़ा और 20 मिनट की ट्रेडिंग रोकनी पड़ी, लेकिन जिस तरह से गिरावट हमने देखी, ऑलमोस्ट 11% के आसपास गिरावट, एक बड़ा नंबर है। बहुत समय बाद यह नंबर देखने को मिला है, तो इसे मुनाफा वसूली की वजह माना जा सकता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि टेक्स सेक्टर में अब कोई बड़ा करेक्शन आ चुका है या आने वाला है?
0: ये मुनाफा वसूली नहीं है, ये जो जो एग्जुबेरेंस जो था, ओवर कॉन्फिडेंस जो था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड इन्वेस्टमेंट पे ऊपर, स्पेशली जो चिप मेकिंग की जो डिमांड जो लोग कह रहे थे क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, डेटा सेंटर्स को बनाना पड़ेगा और चिप की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ेगी। पिछले कई दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डिमांड की जो प्रोजेक्शन जो है उनकी एक बहुत बड़ी रिविजन हुई है। उस रिविजन से जो जिस डिमांड के तरीके स्टॉक मार्केट में चिप मेकर की जो प्राइसेस बढ़ रही थी उसमें एक धक्का आया है, और मैं समझता हूँ कि ये एक रियलिटी चेक है हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड स्टॉक्स और चिप मेकिंग स्टॉक्स के ऊपर। और द कोरियन मार्केट जो बहुत ज्यादा इसके ऊपर निर्भरशील है उनकी मार्केट, उसको ये पहला धक्का मिला है।
2: मूविंग ऑन टू द क्रूड ऑयल मार्केट, ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल टुडे। ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 1.7% डाउन एट $86.85 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड। West Texas Intermediate WTI crude was trading over 1.4% down at $81.41 per barrel when reports last came in. AKB, all the news is centered around the Strait of Hormuz with 20% of oil and gas flows through. But there is also the Red Sea. There is also action in the Black Sea. How do you see oil prices in the short to medium term, especially with India's reliance on imports?
0: Well, it's very difficult to estimate or project what kind of trajectory the Brent crude oil prices or the West Texas crude oil prices will take, for the simple reason that the global situation, particularly in West Asia, is so volatile, so uncertain. I mean, if the Brent crude oil prices came down a bit, that is because Mr. Trump decided not to escalate his offensive against Iran. So as a result of which, Brent crude oil prices come down. So as long as these things will continue, I think the crude oil prices will keep going up and down. And for us, for the Indian economy, it is necessary, and it has already done that, diversifying its sources, diversifying its supplies. And so therefore, that's the way it will go on.
2: Let's move on to the bullion market. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1% down at 1,42,380 rupees per 10 grams, while silver was trading 2% down at 2,17,340 rupees per kilogram a short while ago.
1: मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाला सोना 1% गिरकर 1,41,681 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था और सितंबर अनुबंध वाली चांदी 2.1% की गिरावट के साथ 2,16,420 रुपए पर थी। एकेबी कमोडिटीज के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा परफॉर्मेंस इस समय का उनका चल रहा है और जो भी जिस तरह की स्थिति है उनका कैसा असर उस पर?
0: देखिए, इस वक्त जो फेस्टिवल सीजन एक महीने बाद शुरू हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो नरमी दिख रही है वो नरमी ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। डिमांड बढ़ने वाली है और वो डिमांड जब फेस्टिवल सीजन में डिमांड बढ़ेगी तो मैं समझता हूँ कि इनके जो जो जो येलो मेटल्स जो हैं इनकी भी डिमांड बढ़ेगी और उनके दाम भी थोड़ी बहुत डेवलपमेंट आएगी, इंक्रीज आएगी।
1: एकेबी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices end marginally down. Sensex drops 70 points. Nifty settles at 23,985. India's industrial output grows by 7.3% in June this year. And most Asian stock market indices end in the negative territory. South Korea's Kospi index plummets nearly 11%. And that's it in this edition of Market Mantra for now.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। भाजपा की बांसुरी स्वराज ने विधेयक को परीक्षा माफिया पर प्रभावी कार्रवाई की दिशा में अहम कदम बताया। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल,

0: CPIM के एस वेंकटेशन, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। बैठक के दौरान श्री मोदी ने मंत्रालयों और विभागों के बीच एकजुटता की भावना के साथ काम करने का आग्रह किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने साइबर सुरक्षा में सेंध लगने की मीडिया रिपोर्टों को गलत और अपुष्ट बताते हुए खारिज कर दिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि संबंधित एजेंसियों ने इस मामले की गहन जांच की है। मंत्रालय ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर साझा किया जा रहा अधिकांश डेटा गोपनीय नहीं है। कुछ दस्तावेज वर्ष 2020 से 2022 के दौरान हुई पुराने डेटा लीक से जुड़े हैं। मंत्रालय के अनुसार कुछ लोगों ने पुराने दस्तावेजों में फेरबदल कर उन्हें नया और गोपनीय बताने की कोशिश की है। जांच में यह भी सामने आया कि ये दस्तावेज पुराने हैं, इनमें कई बार संशोधन हो चुके हैं और इनका वर्तमान संचालन से कोई संबंध नहीं है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। चीन में निशानेबाजी विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम स्पर्धा में सोनम उत्तम मस्कर और हिमांशु ढिल्लों ने कांस्य पदक जीत लिया है। पदक तालिका में भारत एक स्वर्ण, एक रजत और 2 कांस्य पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। अनुभवी खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 से 19 अगस्त के बीच होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। The Lok Sabha took up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment 2026 bill incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special task force fast courts for the court day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh said, the new legislation reflects the government's resolve not to allow anyone to compromise with the future of the youth of the country.
2: You must

आपके साथ सुरभि, नमस्कार। जी हाँ, दिन की हलचल थम चुकी है। देखिए कहीं आसमान की तरफ देखिए जरा, कहीं चांद रात को आसमान से झांक तो नहीं रहा। तारे खामोशी से अपनी कहानी तो नहीं कह रहे। हवाओं में घुली है एक मीठी सी खुशबू। जी हाँ, आइए कुछ लम्हों के लिए दुनिया की भागदौड़ को हम और आप यहीं छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अपने दिल की धड़कनों को थाम कर पुरानी यादों, मोहब्बत के कहे अनकहे सिलसिलों और एहसासों के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। जी हाँ, प्रोग्राम है निशिकंधा और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत गीत। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं ये गीत।

कुछ रिश्ते वक्त के साथ खत्म नहीं होते, बल्कि वो तो याद बनकर धड़कन में बस जाते हैं, जैसे चांद का बदलना और मौसम का बदलना, लेकिन एहसास का ना बदलना, क्योंकि ये प्यार वाले एहसास कभी नहीं बदलते। किसी की मुस्कान, उसकी बातें, उसके साथ बिताए हुए पल दिल की किताब में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। शायद इसीलिए कुछ लोग दूर होकर भी दिल के सबसे करीब रहते हैं। तो इस खामोश चांदनी से सजी रात में चलिए हम और आप सुनते हैं ये नगमा।

निशिगंधा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कुछ बातें होठों तक आकर भी कही नहीं जाती, इसीलिए दिल उन अल्फाज को कहीं ना कहीं सहारा देता है अल्फाजों के माध्यम से, या फिर गीतों, गजलों या शायरी के माध्यम से। एक खत में

सिर्फ स्याही नहीं होती बल्कि उसमें होता है इंतजार, धड़कने, ढेर सारे अनकहे जज्बात लिखे होते हैं उसमें। और जब कोई रात ऐसी हो जहाँ पर चांदनी रात हो या खामोश रात हो, तब ऐसे में दिल के पन्ने जब हम पलटने लगते हैं तो हर लफ्ज़ मोहब्बत की खुशबू से महक उठता है। अगर आपने भी कभी किसी के लिए अपने दिल की बात ख़त में लिखी है तो ये नगमा ज़रूर आपके दिल को छू जाएगा। चलिए सुनते हैं ये गीत।

निशिगंधा सुन रहे हैं आप सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। सलाम तेरी मुरव्वत को मेहरबानी को, सलाम तेरी मुरव्वत को मेहरबानी को, मिला एक और नया सिलसिला कहानी को, सलाम तेरी मुरव्वत को मेहरबानी को।

0: गोरी ओ गोरी बड़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़, तोरे नैना ओ मीठे बहना, ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

शहर के साथ चले, रोशनी के साथ चले, तमाम उम्र किसी अजनबी के साथ चले, हमी को मुड़ के न देखा, हमी से कुछ न कहा, इस एहतियात से हम जिंदगी के साथ चले। तुम्हारे शहर में अनजान सा मुसाफिर था, तुम्हारे शहर में जिस आदमी के साथ चले, शहर के साथ चले, रोशनी के साथ चले, तमाम उम्र किसी अजनबी के साथ चले।

ठाक दिनक दिन ठाक तिनक तिन ठाक दिनक दिन ठाक तिनक तिन ठाक। आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: इसलिए कि दुनिया से रस्मे वफा मिट न जाए।
1: इस गीत के साथ निशिगंधा का सफर यहीं तक। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर गीत सुहाने में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया कि राज्यभर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत के लक्ष्यों की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को गति देना था। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। ताइपे ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के रौनक चौहान ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष सिंगल्स के मुख्य ड्रॉ में जगह बना ली है। विश्व रैंकिंग में 66वें स्थान पर काबिज रौनक ने क्वालिफाइंग मुकाबलों में 2 जीतें दर्ज की। पहले मैच में उन्होंने कनाडा के जोशुआ गुएन को 21-15, 21-11 से हराया। इसके बाद रौनक ने ताइपे के कुओ कुआन लिन को 24-22, 21-10 से मात देकर BWF सुपर 300 टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ में प्रवेश किया। दूसरी ओर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय मुक्केबाज प्रिया घंघास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। प्रिया ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्कॉटलैंड की नियाम मिशेल को 4-1 के अंकों से हराया। इस जीत के साथ उन्होंने भारत के लिए एक पदक पक्का कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है गीत सुहाने और मैं हूं आपके साथ सुरभि। बहुत खूब लिखा है किसी ने कि अब दिल की तरफ दर्द की यलगार बहुत है, अब दिल की तरफ दर्द की यलगार बहुत है, दुनिया मेरे जख्मों की तलबगार बहुत है, अब टूट रहा है मेरी हस्ती का तसव्वुर, अब टूट रहा है मेरी हस्ती का तसव्वुर, इस वक्त मुझे तुझसे सरोकार बहुत है, दुनिया मेरे जख्मों की तलबगार बहुत है। पानी से उलझते हुए इंसान का ये शोर उस पार भी होगा मगर इस पार बहुत है, अब दिल की तरफ दर्द की यलगार बहुत है, दुनिया मेरे जख्मों की तलबगार बहुत है।

अगर यूं ही ये दिल सताता रहेगा, अगर यूं ही ये दिल सताता रहेगा, तो एक दिन मेरा जी ही जाता रहेगा। मैं जाता हूं दिल को तेरे पास छोड़े, मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। मैं जाता हूं दिल को तेरे पास छोड़े, मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। अगर यूं ही दिल ये सताता रहेगा, तो एक दिन मेरा जी ही जाता रहेगा।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और बहुत ही खूबसूरत गीत और नगमे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अगला जो गीत है दोस्तों, वो बहुत ही खूबसूरत गीत है। कभी ना कभी दिल किसी एक ऐसे इंसान के करीब बहुत ज़्यादा होता है जिसके साथ रहकर जीवन की सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। वो प्रेम है, सम्मान है, और वो एक ठंडक है जो हर गर्मी से राहत देती है। तो चलिए सुनते हैं दादी माँ फिल्म का ये गीत, और बहुत ही खूबसूरत गीत है दोस्तों। तो आपको बता दें कि फिल्म है दादी माँ, आवाज़ें हैं मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर साहब की।

गीत सुहाने आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। कहते हैं कि दिल की सबसे सच्ची बातें अल्फाज नहीं, लफ्ज नहीं, आंखें कहती हैं। कभी एक नज़र जब मुस्कुरा उठती है तो कभी वही नज़र दिल के सभी राज भी पढ़ लेती है। ऐसा लगता है जैसे आंखें आंखों की तलाशी ले रही है, हर धड़कन में एक ही नाम शायद ढूंढ रही है। तो अगर आपकी निगाहें भी किसी एक ऐसे ही चेहरे पर ठहर जाती हैं तो समझ लीजिए कि मोहब्बत खामोशी से आप पर अपना असर दिखा रही है। तो इश्क की सबसे खूबसूरत जुबान आंखें ही हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर सुनते हैं आंखों की तलाशी पर एक ऐसा ही गीत। फिल्म है दिल और मोहब्बत, आवाज़ है महेंद्र कपूर साहब की।

फिर वही चांद वही रात कहाँ से लाऊं, फिर वही चांद वही रात कहाँ से लाऊं, उससे दोबारा मुलाकात कहाँ से लाऊं। हर घड़ी जागता रहता है दुखों का सूरज, नींद आती है मगर रात कहाँ से लाऊं, फिर वही चांद वही रात कहाँ से लाऊं, उससे दोबारा मुलाकात कहाँ से लाऊं।

कभी कभी किसी से शिकायत नहीं होती, दुनिया को कुछ बताना नहीं होता, सिर्फ दिल को एक पनाह चाहिए होती है। जहाँ शिकायतें नहीं होती, जहाँ सिर्फ अपनापन होता है, ऐसे एक रिश्ते की लोगों को दरकार होती है।

और इसी गीत के साथ गीत सुहाने का ये सफर यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर रात सुरमई में। और अब सुरभि को दीजिए इजाजत, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। इस बीच महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर सचिव स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने वित्त और अर्थव्यवस्था, वाणिज्य तथा उद्योग और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों की भावी कार्यसूची की समीक्षा की। पाकिस्तान मानवाधिकार

कार आयोग ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हिंसा तुरंत रोकने और घटनाओं की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग की है। आयोग के अनुसार संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के लॉन्ग मार्च के दौरान हुई झड़पों में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए हैं। मानवाधिकार आयोग ने कहा है कि रावलकोट में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कई लोगों के मारे जाने और घायल होने की खबरों से वो चिंतित है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उपायों की समीक्षा की। श्री सोनोवाल ने विदेश मंत्रालय, नौवहन महानिदेशालय और ओमान, सऊदी अरब, ईरान, रूस और यूक्रेन सहित कई देशों के भारतीय मिशन प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में वैश्विक समुद्री परिवहन मार्गों पर बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नाविकों की सुरक्षा, आपात स्थिति में सहायता और तैयारियों की जानकारी दी गई। श्री सोनोवाल ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग बैठकें की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि दोनों बैठकें सकारात्मक और सार्थक रहीं। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों, ड्रोन समझौते, पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और शांति वार्ता में प्रगति पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान की कथित गतिविधियों और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। ओडिशा में लगातार मानसूनी बारिश के कारण राज्य की प्रमुख नदियों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की गंभीर स्थिति बनी हुई है। वहीं केरलम के 10 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत की हरजिंदर कौर ने महिला 69 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर देश की पदक तालिका में एक और पदक जोड़ दिया है। हरजिंदर ने कुल 227 किलोग्राम भार उठाया। उन्होंने स्नैच में 101 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम का भार उठाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है रात सुरमई और मैं हूँ सुरभि आपके साथ। बात खूब कहा है किसी ने कि कितने ही फसाने याद आए, कितने ही सहारे याद आए, कितने ही फसाने याद आए, कितने ही सहारे याद आए, तूफान ने बाहें फैला दी जिस वक्त किनारे याद आए। दीवार से लगकर सोचूं कि उम्मीद का सारा दिन गुजरा, जब रात हुई हमको भी सब ख्वाब हमारे याद आए, कितने ही फसाने याद आए, कितने ही सहारे याद आए। जिंदगी के सफर में कभी कभी ऐसे मोड़ भी आ जाते हैं जब लोग चारों तरफ होते हैं लेकिन दिल फिर भी वीरान महसूस करता है। वो तन्हाई, वो बेचैनी और उन कहे अनकहे जज्बात को अगर कोई समझ सकता है तो शायद वो कोई अपना ही होता है।

है, लेकिन ऐसा होता नहीं कि उस दौरान कोई अपना साथ हो। तो ऐसे में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा गीत जिसने आपकी उस तन्हाई, बेचैनी और अनकहे जज्बातों को समेट लिया है। ये सिर्फ एक गीत नहीं है बल्कि उन दास्तानों से बढ़कर दास्तान है, वो एहसास है इसमें जिसमें घुलकर आप अपनी ज़िंदगी को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए सीधे ये धुन जो हमारे रूह तक उतर जाती है, सुनते हैं कुछ अधूरे ख्वाबों को, कुछ अनकही बातों को और कुछ मीठी यादों को याद करते हैं।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। कहते हैं कि मोहब्बत जब पहली बार दस्तक देती है ना, तो दिल को ना वो उम्र याद रहती है ना दुनिया की कोई रस्म। बस एक ही ख्वाहिश होती है कि उस पल को थोड़ा और जी लिया जाए। और जब दिल बेकाबू होने लगता है, तब प्यार से कई लफ्ज कई बातें दिल से उठती हैं। तो आज एक ऐसा ही नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें बड़ी ही मासूमियत से कुछ ऐसी ही बातें कही गई हैं, जिसमें मीठी बेताबी भी है और पहली मोहब्बत की वो कशिश, जिसे बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयां किया गया है। और इस गीत को सुनते ही लोगों की जबान पर, होठों पर मुस्कुराहट छा जाती है। तो चलिए सुनते हैं दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गीत।

रात सुरमई आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। मैं दुनिया की हकीकत जानता हूँ, मैं दुनिया की हकीकत जानता हूँ, किसे मिलती है शोहरत जानता हूँ। तेरी यादें हैं शब बेदारियाँ हैं आँखों को शिकायत जानता हूँ। मैं दुनिया की हकीकत जानता हूँ, किसे मिलती है शोहरत जानता हूँ।

आएगा दिल से दुआ तो करो, वो आएगा दिल से दुआ तो करो, मोहब्बत से दिल आशना तो करो, मिलेगा कोई बन के उनवान भी, कहानी की तुम इब्तदा तो करो, तुम्हारे करम से है ये जिंदगानी, मैं बुझ जाऊंगा तुम हवा तो करो, हजारों मनाजिर निगाहों में है, रुकोगे कहाँ फैसला तो करो, वो आएगा दिल से दुआ तो करो, मोहब्बत से दिल आशना तो करो।

और आज सुरमई में चलते चलते अपने अंजाम की तरफ आ चुके हैं, तो अब चलते चलते हम आपके लिए लेकर आए हैं सौदागर फिल्म का गीत, कविता कृष्णमूर्ति और मनहर और सुखविंदर की आवाज़ में।

और इसी के साथ रात सुरमई का ये सफर यहीं तक। सुरभि को दीजिए इजाजत, हमारी मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। महाराष्ट्र, बिहार और असम में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने का आदेश दिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य के गृह विभाग को निर्देश दिया है कि राज्य भर में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले वापस लिए जाएं। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले

0: जम्मू कश्मीर में कराए जा रहे तथा कथित विधानसभा चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन को छिपाने का छलावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर जेलेंस्की और इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अलग अलग बैठकें की। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि दोनों बैठकें सकारात्मक और सार्थक रहीं। जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ प्रतिबंधों, ड्रोन समझौते, पेट्रियट वायु रक्षा प्रणाली और शांति वार्ता में प्रगति पर चर्चा की। वहीं प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान की कथित गतिविधियों और उसके परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ अभ्यास शुरू हुआ। वायुसेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भी जीता। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम कर लिए हैं। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलबीर सिंह ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। हरजिंदर कौर स्नैच में 101 और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम के साथ कुल 227 किलोग्राम का भार उठाया। वहीं एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The Lok Sabha took up the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 for consideration and passing. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties, such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of the convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Moving the bill, Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions Dr. Jitendra Singh said, the new legislation reflects government's resolve not to allow anyone to compromise the future of the youth of the country.
2: You must compliment Prime Minister Modi and this government. It has finished an unfinished task which you should have accomplished. In 2024, this bill was brought in to reassure the students that their future is safe. So we learned from the experience of the 2024 Act and the subsequent sequence of events, like any responsible government should do. And therefore, this amendment is being brought in to make the law more stringent, A, and to ensure speedy justice, so that the credibility of all these exams gets enhanced and gets reinstated.
1: Participating in the discussion, Congress MP K.C. Venugopal stressed the need for wider educational reforms and comprehensive changes in the examination system. Several other members, including Basuri Swaraj and Tejaswi Surya of BJP, Priyanka Gandhi Vadra and Gaurav Gogoi of Congress, Abhishek Banerjee of TMC, NCP, SP, MP Supriya Sule, Dr. Shrikant Shinde of Shiv Sena and Akhilesh Yadav and Dimple Yadav of Samajwadi Party took part in the debate. Other members, including BJP's Anurag Thakur and Shashank Mani, Congress MP K.C. Venugopal, S. Venkateshan of CPIM, Gurumurthy Madala of YSRCP, RJD's Abhay Kumar Sinha, IUML MP E.T. Muhammad Bashir, JMM's Vijay Kumar Hansdag, CPR MP K. Subbarayan, JDS MP M. Malesh Babu, AIMIM's Asaduddin Owaisi and Harsimrat Kaur Badal of SAD were among those who participated in the discussion. However, the discussion remained inconclusive. Later, the presiding officer Sandhya Ray adjourned the House to meet at 11 a.m. today. The Supreme Court yesterday observed that recent nationwide protests over the NEET paper leak warranted a thorough, fair and impartial investigation into the allegations of injuries to the students and police officials. The Apex Court directed the release of student protesters under the age of 18 who were arrested during the demonstrations and have no previous criminal records.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती, और आप सबका स्वागत करती हूं। और शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ।

जब दिलों में सच्चा प्यार बस जाता है तो दुनिया की बातें मायने नहीं रखती। मोहब्बत अपने भरोसे हर इम्तिहान को मुस्कुराकर पार कर लेती है।

सच्चा इश्क सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि दिल की सबसे खूबसूरत इबादत है। इसमें चाहत भी है, सम्मान भी है, और उम्र भर साथ निभाने का वादा भी।

जिंदगी का हर सफर आसान हो जाता है जब साथ कोई अपना हो। एक सच्चा हमसफर हर खुशी को दोगुना और हर गम को आधा कर देता है।

प्यार के बिना जिंदगी अधूरी सी लगती है। किसी अपने की मुस्कान और साथ ही जीवन को हर पल जीने का नया कारण दे देता है प्यार। और जब प्यार जीवन में आ जाए तो जिंदगी उसके बिना अपने आप ही पूरी सी लगने लगती है।

कभी कभी किसी की एक झलक ही दिल की धड़कनों को नई रफ्तार दे देती है। लगता है जैसे रात की खामोशी में, लगता है जैसे रात की खामोशी में चांद खुद मुस्कुराने चला आया हो।

दिल की बातें शब्दों से कम, एहसासों से ज्यादा कही जाती हैं। जब दो दिल एक दूसरे को समझने लगे तो हर धड़कन एक मीठी दास्तान बन जाती है।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। चर्चा में बीजेपी के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रदर्शनकारी नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए हालिया राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनों से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने कहा कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके खिलाफ कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद वर्ष 2011 के पुराने भर्ती नियम अब प्रभावी नहीं रहेंगे। भारत दुनिया में सीफेयरर्स यानी नाविकों की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। बीआईएमसीओ आईसीएस सीफेयर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक शिपिंग उद्योग को 3,11,936 समुद्री पेशेवर उपलब्ध कराए हैं। वैश्विक समुद्री कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी 12.16% हो गई है। इस सूची में फिलीपींस पहले स्थान पर है, जबकि भारत ने चीन, रूस और इंडोनेशिया को पीछे छोड़ा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC द्वारा आयोजित मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलाबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार

एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की सहरा फिल्म के इस प्यारे से गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है लता मंगेशकर ने, संगीतकार रामलाल, और गीतकार हसरत जयपुरी।

आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अगला गीत फिल्म बरसात की रात से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार आरडी बर्मन, गीतकार आनंद बख्शी।

अभी आपने गीत सुना खून भरी मांग से आशा भोसले और उनके साथियों की आवाज़ में संगीतकार राजेश रोशन, गीतकार इंदिवर।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म नई इमारत से लता मंगेशकर की आवाज में, संगीतकार बपी लहरी और गीतकार इंदिवर।

अभी आपने गीत सुना मन फिल्म से उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीतकार समीर, संगीतकार सजीव दर्शन।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म दीवाना से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

और ये कार्यक्रम का आखिरी गीत था। जल्द मुलाकात होगी यानी 5:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम भोर सुहानी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में कल लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई। विधेयक में पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में 10 वर्ष तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोषियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें गठित करने, 2 महीने में जांच और 3 महीने में मुकदमे का निपटारा सुनिश्चित करने का भी इसमें प्रावधान किया गया है। विधेयक पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन छात्रों के भविष्य की सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए लाया गया है। चर्चा में कांग्रेस के गौरव गोगोई ने विधेयक को अपर्याप्त बताते हुए शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार की मांग की। वहीं चर्चा में भाजपा के अनुराग ठाकुर और शशांक मणि, कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल, सीपीआईएम के एस वेंकटेशन, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी और शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल सहित कई सदस्यों ने भाग लिया। हालांकि विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो सकी। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में हुए प्रदर्शनों में शामिल नाबालिग छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने अधिकारियों को प्रदर्शनों से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि पिछले सप्ताह हुए प्रदर्शनों के दौरान छात्रों और पुलिस अधिकारियों को लगी चोट के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच जरूरी है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने फैसला किया है कि प्रदर्शन में शामिल छात्रों के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सरकार ने कहा है कि जिन प्रदर्शनकारियों का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके विरुद्ध कानून के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार अब तक नीट विरोध प्रदर्शन के संबंध में 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गृह मंत्रालय ने सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी भर्ती के लिए नए नियम जारी किए हैं। इन नियमों के तहत हर साल होने वाली भर्ती में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। ये नए नियम 27 जुलाई से लागू हो गए हैं। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ऑस्ट्रेलिया में रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के साथ युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भाग ले रही है। इसमें कुल 21 देश शामिल हैं। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि डार्विन के प्रसिद्ध मिंडल बीच पर राफेल विमानों की उड़ान के साथ यह अभ्यास शुरू हुआ। वायुसेना की टुकड़ी ने बहुराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भी जीता। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC के मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी में 20 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। हाल के दिनों में पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर कथित रूप से बल प्रयोग की घटनाओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच की मांग की है। संगठन ने पाकिस्तानी अधिकारियों से क्षेत्र में संचार सेवाएं बहाल करने और मीडिया तथा स्वतंत्र पर्यवेक्षकों को वहां जाने की अनुमति देने की अपील की। मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और राजस्थान में ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कई पदक अपने नाम किए हैं। भारोत्तोलक हरजिंदर कौर और लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। वहीं एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में ऐतिहासिक रजत पदक जीता। वे कॉमनवेल्थ गेम्स में स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। मुक्केबाजी में भारत के 3 खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल में

समय हो गया है 5:11 और 9 सेकेंड और ये समय है प्रोग्राम भोर सुहानी का। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ।

सत्य हमारे जीवन की शक्ति है, शिव कल्याण का मार्ग, और सुंदरता हमारे श्रेष्ठ कर्मों में बसती है। जब विचार सच्चे और कर्म पवित्र हों, तब जीवन स्वयं एक सुंदर गीत बन जाता है।

जिंदगी की असली बहार तब खिलती है जब हम अपनी मुस्कान, अपनापन और खुशियाँ दूसरों के साथ बांटते हैं। बांटी हुई खुशी कई गुना बढ़ जाती है और यही जीवन की सबसे सुंदर दौलत है।

जीवन की सबसे बड़ी सफलता केवल अपने लिए जीने में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में उम्मीद और मुस्कान जगाने में है।